0: 34 काठमाडौँ सेवा केन्द्र काठमाडौँ 98 51 322 147।
1: विचार व्यवस्थापक जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 32 गाउँपालिका 5 मैना पोखरी दोलखा।